0: अब क्यों उगवे दाल जे एक हो ता उगवे रुटी होर तो होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए पै विच कुंभ चढ़ाही है शर्म पाहो तन होए नान पक्ती जीर पै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
1: लपा दुरा जमे तक कूड़ हुआ सिकदार काम निपस्त पुछिए बह करे विचार अंदर ज्ञान भी होने पाहे प्रेमदार।

जुगत न जान छड़ वह करवार सब को पूरा आपे होवे घटना कोई आखे पत प्रवाना पिछे पाइए ता नानक तू ले जाप

सतयुग रथ संतोख का धर्म ग्रथ बाहो त्रेते रथ जते का जोर ग्रथ बाहो द्वाप रथ तपे का सत ग्रथ बाहो कलयुग रथ अगन का कूड़ ग्रथ बाहो।

सिमलर उकसरायरा अत दिरे गत मुच ओए जे आवे आस कर जाहे निरस कित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिठत निवे नानका गुण चंगे या तत सब को निवे आप को पर को निवे न कोई तत राजू तो लिए निवे स गौरा हो अपराधी दूना निवे जो हंत मृ का शिष निवाये क्या थिए जारी देख सुदे जाहे महला पहला।

तन कंडे ना दूर ननुकूल रहा भरपूर मथे टिका तेड़ तो तिक खाए हथ श्रीजत पसाई नील वस्त्र पर

0: प्राणी जीव है जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखिए सूतक बबेर सोए। नानक सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला।
1: मन का सुत लोग है जिब सुत को।

धन गुरु अमरदास जी महाराज का यह पवित्र श्लोक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 599 अंकत है। गुरुदेव कहने के बिन सतगुर सेवे जी के बंधना, जे असि गुरु की सेवा नहीं करांगे साडे जी नूं बंधन पए रहणगे। बंधन एक तो शरीर के बंधन होंदे ने, शरीर के बंधन भी वधिया नहीं है। कई बार की होंदा जिहड़ा बंदा मन करके सुतंत्र है, शरीर के बंधन उन्हों बन नहीं सकते, शरीर के बंधन उन्हों दुखी नहीं कर सकते। इस करके सब तो खतरनाक है जी दे बंधन। जी नूं बंधन केड़े पए हुए ने, जिन्हें औगण ने सब बंधन ही ने। गुरबाणी का वचन के नानक औगण जेतड़े तेते गली जंजीर। आ जिन्हें औगण ने यह जंजीरा पईया हुई ने, सानू बंधन पए हुए ने। जो जो कर्म कियो लालच लग तेह ते आप बंधायो। जो भी कर्म असी स्वार्थित होके करते हैं, लालचवश होके करते हैं, उही आपां उहदे विच बच जाने हैं। कई तरह के बंधन ने सानू, मोह माया के बंधन ने, विकारां के बंधन ने, होर कई तरह के बंधन सानू पए हुए ने। देखो ना, इन्हां बंधना करके असी दुखी हैं। वैसे तो दुख कोई नहीं है, रोटी पानी परमात्मा ने देना है, मेहनत करांगे मिली जाएगा। जिन्नी कोई जिंदगी रब ने दिती उन्ना चिर असी जीना है, उदू वध ना जीव सकदे ना कोई सानू को खत्म कर सकदा है। लेकिन साडे अंदर जिहड़े बंधन ने ओह साडे दुखां दा कारण है। उन्हां बंधना नू तोड़न दे लई ना कई बार असीं धार्मिक कर्म करदे आ, करने चाहीदे ने, पर धार्मिक कर्म ते करने सी बंधन तोड़न दे लई। पर कर्म करदे आ कई वारी बंदा फिर बंधन च बच जांदा है, बंधन होर मजबूत हो जांदे ने। सतगुरु साहिब जी महाराज ने 16 राग दी अष्टपदियां अंदर एक वचन कहा है कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पवंगम साधे, पंच जनासो संग न छुटकियो, अदक अहंग बुद्ध बाधे। बंदा पाठ करता है, देखो पाठ तो करना चाहिए, चंगी गल है, लेकिन पाठ करना चाहिए समझण दे लई, जानण दे लई। पाठ करना चाहिए जिंदगी अंदर उच्चे उठण दे लई, अवगुणत मुक्त होण दे लई। बंदा पाठ करता है लेकिन पाठ करन दा ही हंकार हो जांदा है उहनूं कि मैं तो बहुत पाठ करदा हां, मेरे वर्गा ते वधिया पाठ ही कोई नहीं कर सकता। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, फिर धर्म ग्रंथां दी विचार भी करदा है। विचार करदे भी उन्हों हंकार हो जाता कि मैं बहुत विद्वान बन गया हाँ, यह भी बंधन पै गया। और निवल भियंगम साधे, और योगियों वांगू निवली आसन को कर ले, और अनेक तरह के कर्म कर ले, पंच जना से संग ना छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। सतगुरु जी कहिंदे सब कुछ करदे आ ना, आ जिहड़े पंज विकारां दे बंधन पए इन्हां तों छुटकारा नहीं हुंदा। लगों होर बंदे नूं इह जिहड़े ने बंधन मजबूत हुंदे चले जांदे ने, होर बंधना विच बंदा बजदा जांदा है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे जिहड़े

वार वार सतगुरु जी ने गुरु की सेवा की गल की है। साहब जी का अमृत बाणी च एक बचन है कि सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना होमे विचों जाए। भी जे कोई चित ला के गुरु की सेवा करे, मन जोड़ के सेवा करे, गुरु की के सेवा की कदी बिरथी नहीं जाती, अकारथ नहीं जाती, जो चाहवेंगे मिल जाएगा। और इत्थे बस नहीं है, मन चिंदे फल तो सानू मिलणगे, साडे अंदरों अहंकार मिटेगा गुरु की सेवा करके। गुरु साहब जी कहिंदे जे असी गुरु की सेवा नहीं करांगे अहंकार च काम करांगे बंधना च पए रहांगे, जे असी गुरु की सेवा नहीं करांगे अहंकार च कर्म करांगे जमदे मरदे रहांगे किते सानू टिकाणा नहीं मिलेगा। जे असी गुरु की सेवा नहीं करांगे फिर की होएगा, फिका बोलना, साडे बचना दे अंदर भी निम्रता नहीं रहेगी। देखो ना, मन च हंकार होए तो बंदे दे बोल जड़े ने वो कौड़े हो जाते, फिके हो जाते, लोगों का दिल तोड़ने वाले हो जाते हैं। जो असी गुरु की सेवा करांगे साडे बोल भी बदल जाएंगे। गुरु की सेवा दा अर्थ है कि गुरु की बाणी अनुसार जीवन बतीत करना। सतगुरु साडी जिंदगी की घाटत कटते ने, साडी जिंदगी नूं सवारदे ने। गुरु की बाणी पढ़दे आ मनुख दे बोल मिठे हो जाते ने, ते जे जिंदगी अंदर बोल ही मिठे नहीं है। सतगुरु जी की बाणी कहिंदी फिक्का बोल विगुचणा सुन मूर्ख मन अजान, नानक फिक्का बोले है तन मन फिक्का होए, फिक्का

वो फिक्का सदिये, फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगे सटिये, मुँह थुका फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए। आसादी वार विच सतगुरु जी दे बचन ने कि जेड़ा बंदा फिक्का बोले, कौड़ा रुखा बोले, नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए, ओदी तां पहचान ही फिक्कियां च बन जांदी है। आपां कहिंदे वी इहनूं नहीं बोलना हुंदा, इह तां बंदा बड़ा कौड़ा बोलदा, रुखा बोलदा। सतगुरु जी कहिंदे फिक्के बंदे नूं इस दुनिया च वी कोई माण नहीं ते दरगाह च वी माण नहीं है। गुरु साडे बोल सवारदे ने, साडे बोलां च वी प्यार आ जांदा है, निम्रता आ जांदी है, सहज आ जांदा है। पर जे असीं गुरु की सेवा नहीं करांगे, सतगुरु जी के बिन सतगुरु सेवे फिक्का बोलना, कोई मनुख बाहरों इवें लगे कि वह गुरु की सेवा कर रहा है जां गुरु दे नेड़े रहिंदा है, जे उहदे बचन मिठे नहीं ना, जे उहदे बचना च प्यार नहीं, समझो वह गुरु की सेवा नहीं करदा, दिखावा कर रहा है। गुरु की सेवा करदे तो मनुख की जिंदगी बदल जाती है। देखो ना, चंदन दे कोल रहण वाली बनस्पति जिहड़ी है वह चंदन बन जाती है ना। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है कि ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। पर चंदन दे कोल एक बूटा हुंदा बांस का बूटा, वह नहीं कदी सुगंधी प्राप्त करता। बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़े आ इउं मत डूबो कोए, चंदन के निकटै वसै बांस सुगंध न होए। कहिंदे जिदां दा बांस है कि इदां दे ना बन दिओ। बांस बन गए, बांस चंदन दे कोल रह के भी सुगंधित नहीं हुंदा। जे साडी बांस वर्गी बिरती हुई साडे ते अहंकार दा उपर कवर चढ़िया होया, असी गुरु कोल आके भी ना फिर साडे बोल मिठे नहीं होणगे। गुरु कोल आके भी साडा जीवन सवरेगा नहीं। गुरु कोल आउणा गुरु कोल कुछ ग्रहण करन लई। कलगीधर पातशाह जी दी जिंदगी दी एक कथा हुंदी है कि गुरु साहिब जी ने एक दिन सिखां नूं एक गल कही, भाई एक भांडे च ना पाणी पा के उहदे थोड़े पत्थर पा दिओ, एक च पा के पाणी मिट्टी पा दिओ, एक च पा के तुसीं पाणी थोड़ा सो उहदे विच सो मिट्टी पत्थर पतासे पा दिओ। कुछ चिर बाद सतगुरु जी ने कहा, देखो भाई इन्हां दा की हाल है, पत्थर किवें ने पाणी च? कहिंदे जी पत्थर ते पत्थर ही ने, पत्थरां नाल की होणा, माड़े जे गिले होए ते फिर वह सुक जाणे ने अंदरों कठोर, पत्थर तां पाणी च घुलदे नहीं है। ते सतगुरु जी कहिंदे मिट्टी, कहिंदे मिट्टी घुल गई पर पाणी जिहड़ा ना वह गंधला हो गया, ते पतासे कहिंदे घुल गए पर पाणी मिठा हो गया है, पाणी साफ भी है ते मिठा हो गया। सतगुरु जी कहिंदे गुरु कोल तीन तरह के प्राणी आउंदे ने, तीन तरह के। एक तो होंदे जिहड़े पत्थर वर्गे, पत्थर जिवें माड़ा जिहा गिला होया ते मुड़ के सुक जाणा है। गुरु कोल आए थोड़ा जिहा असर पिया, लेकिन माड़ा जिहा दूर गए फिर ओह जे ओह अंदर उदा ही पत्थर वर्गे बने रहे, ना बोल चाल सुधरिया, ना जीवन सवरिया, किते मन च निम्रता ना आई, भावना ना आई। सतगुरु जी कहिंदे पत्थर नहीं बनना। एक है मिट्टी वर्गे, मिट्टी वर्गे वह होंदे ने जिवें मिट्टी पाणी च पाई ते उहने पाणी नूं गंधलियां करता, अपना रंग पाणी ते छड़ता। मिट्टी वर्गे वह होंदे जिहड़े होंदे ने गुरु कोल कि वह सोचदे कि हुण ना लोकां दीआं नज़रां साडे च रहण, अपना प्रभाव पए उहनां दा, दुनिया देखे साडे वल, अपना रंग छड़दे ने लोगां दे उपर। सतगुरु जी कहिंदे इहो जिहे वी नहीं बनना आपां कि सानूं दुनिया चंगा कहे। अगले है पतासे वर्गे, पतासा घुल गया, पानी नूं मिठिया भी कर दिता है, पानी दा रंग नहीं बदलिया। आपां इहो जी बिरती लैके आउणा कि जिथे बैठीए वातावरण ही मिठा हो जाए, साडी जिंदगी दा औरा इहो जिहा बण जाए कि हर को प्रभावित होए। पर ओह तां बनेगा जे असीं मन नूं गुरु के शब्द दे नाल जोड़ांगे, जे गुरु की बाणी नाल जोड़ांगे। इस करके सतगुरु साहिब जी कहिंदे जे असीं गुरु की सेवा नहीं करांगे ते फिर की होएगा, फिक्का बोलना नाम ना वसे बन आए, फिर असी फिक्कियां ही गल्लां करदे रहांगे, एवें थोथियां जिहां होछियां जिहां गल्लां करदे रहांगे। साडे अंदर परमात्मा दा नाम नहीं वसेगा जिन्ना चिर अंदर नाम नहीं वसदा। देखो मुख तो जपना वडभागियां नूं प्राप्त हुंदा, बड़े सत्कारयोग ने नाम मुख तो जपण वाले, पर जदों अंदर वस जाए तो जीवन बदल जांदा है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे जे असीं गुरु की सेवा नहीं करांगे, फिक्के रहांगे, साडे बोल वधिया नहीं होणगे ते साडे अंदर वाहिगुरु जी का नाम नहीं वसेगा। जपजी साहब जी की बाणी पढ़ते हैं ना, तो सतगुरु साहब जी ने एक थां दे बचन के कि आपां किहड़े बचन बोलीए कि रब साडे ते रीझ जाए, मोह के बोलण बोली है जे सुन धरे प्यार। भई आपां मूंह तो किहड़ियां गल्लां करिए कि परमात्मा साडे रीझे, इहदा मतलब कि जे रब की बंदगी करनी है तो सानू बोलचाल भी सवारना पेगा। अपना
बोल चाल भी साडा वधिया हो जाना चाहिदा। जे साडा बोल चाल ही नहीं वधिया ते असी किवें रब दा प्यार लवांगे। जे साडे बोल चाल ने लोकां दे मन जिहड़े ने ओह तोड़ने शुरू करते, लोकां नूं ठेस पहुंचाउणी शुरू करती, फिर साडी भगती कदी है। बाबा फरीद साहिब जी ने कहा, हिक फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा तणी, हियाउ ना कही ठाए माणक सब अमोल वे। जे तो प्रिया दी सिक हियाउ ना ठाहे कहीं दा। जे तेनू रब नू मिलन दी को रीझ है, सिक है, भुख है, ते किसे दा दिल ना दुखाई। सारे अंदर परमात्मा बैठा होया, किसे नू फिक्का बचन ना बोली। जे असी फिक्का ही बोलते रवांगे ते रब दा प्यार किवें लवांगे। हां लोकां दी नजरां च असी लोकी सोचणगे कि बड़ा वड्डा भगत है जी, ये बड़ी सेवा करदा। लोकी सोचणगे, लोकां दे सोचण नाल गल नहीं बननी। दुनिया दे विच जिन्ने मर्जी असी चंगे बन जाइए, जे रब दियां नजरां च प्रवान नहीं है, ये साडी चंगयाई किसे अर्थ नहीं है। जपजी साहिब जी दे पावन बचन असी पढ़दे हां कि बंदा लंबी उम्र वाला बन जाए, चार युगां जिनी उम्र बन जाए, चार तो भी 40 युगां जिनी बन जाए, फिर की हो जाएगा भला? क्योंकि किसी बंदे नूं ये हुंदा है कि वड्डी उम्र करके शायद मैं बड़ा महान बन जाऊंगा। ते जोगी लोग यही कोई दस दे तुहाडी उम्र किदां मिलनी है। सतगुरु जी कहिंदे दुनिया च इन्ना उहदा माण होए, जिधर जाए उहदे नाल चलन च हर को माण महसूस करे, हर कोई उहदी वडियाई करे, लोकां दीआं नजरां च उहदी बड़ी इज्जत होए। पर जे रब दे दर ते प्रवान नहीं है ते फिर ते कोई गल नहीं ना। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणी है नाल चले सब कोए, चंगा नाउं रखाए कै जस कीर जग ले, जे तिस नजर न आवे तां वात न पुछे के। जे रब दीआं नजरां च प्रवान नहीं होया तां अखीर वेले किसे ने उस दी वात नहीं पुछणी। इस करके सतगुरु साहिब जी कहिंदे जे असीं गुरु दी सेवा तों वांझे रहे, साडे बचन फिक्के रहणगे, हंकार करके फिक्के रहणगे, फिर साडे अंदर परमात्मा दा नाम, परमात्मा दा प्यार नहीं वसेगा।

जिन्हां ने भी परमात्मा की सेवा की, जिन सेवया जिन्हां ने परमात्मा की सेवा की उन्होंने फल मिल गया। असी रोज वचन पढ़ने के जिन्नी इनाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने परमात्मा का सिमरन किया घालना की उन्होंने मुख तो उजले ने और उन्होंने कई छुटकारा हो गया। ते सानू सतगुरु जी ने वार वार गुरबाणी च केवल परमात्मा के प्यार में जुड़न की गल कही है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के किन्ने प्यारे बचन कि ओट लिहो हर नामा रे मन ओट लिहो।

तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया।

साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे घर ता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिव सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया

साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया पर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु बेटो जिस दिया ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो अजे पंच शब्द तित घर सभागे घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटको मारिया तुर कर्म पाया।

सकल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे आनाद तूरे श्लोक।

संगत विच वरते जो जीव शके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहे गुरु नाम जपे जी आप जी करो कृपा अमृतमयी बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुकम अनुसार जीवन जिउण दी समर्था सूझ बख्शनी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया अंतरा

अमृत शोड बिख लगे बिख खटना बिखरास सतगुर मिले भुख गई पेखी भुख ना जाए दुख लगे कर कर फिरे अगे दुनी मिले सजाए।

नानक तीम खुजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

होर नाही कोय, ना को हो आ ना को होय, जे वड़े आप ते वड़ देरी दात, जैना देना करके कीती रात, खसम विसारी ते कम जात, नानक नामे बाईस नात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव, मोको राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत अमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जैन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रिपता सहे, मिल संगत गुण परगास, जना हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखया लखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मान चितवहे उदम, जा आहर हर जीओ परया, सैल पत्थर में जनते उपाए, ताका रिजक आगे कर धरया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया रहाओ, जन न पिता लोक सुत बैंता, कोय न किसकी तरया, सिर से रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करया, उड़े उड़ आवे सह कौसा, तिस पाछे बचरे छरया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया, सब निदान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया, सब निदान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा, सब त्या वहे सब त्या वहे तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर ते आवो हो संतो जी, सब दुख विसार नहारा, हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पे खारी जी, सब तेरे चो जबड़ाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुद बिन अवर ना जाना, तू बार बरम बे अंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर ते आवहे हर ते आवहे तुद जी, से जाने जुग में सुखवासी, से मुक्त
से मुक्त पाए जेना हर त्याया जी तेना टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन से बया जिन से बया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बयंत बेयंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर निके अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी।

शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहे सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाही जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मिंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदया बिछोड़या आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माही तुझ मिन दूजा कोई नाही जी जंत सब तेरा खे विजोग मिल बिछोड़या संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद मिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए धन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरण पाईले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम दिखा तहें डूबियले मान एक न चेतस मूड मना हर विसर तेरे गुण गलया रहो ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवंत नानक तिन की शरणा जेनो तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे होरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत पाजे केवल नाम स्रंग जामलाग पव जुल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहो जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कोहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी क्रोहा दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा।
तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपार, हमरे दुष्ट स्वभाव तुम काबो हो, आभादे मोहि बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब हिरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें सा कोई अवर न ध्याऊं, जो बार चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये, आभाद मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास निवरिये, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख लो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपथरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सलोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सिवकन को सेवगुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख कर तुहों कब हूं, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, ड्रंका निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़ उचारत पिदा, जाको भेव न पावत बिदा, ताको कृपाण अनुमानत, महामूड़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदाशिव, ड्रंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुदह जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंड जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमड हयो शंकर अकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आ जुगा स्वरूप स्वयंपव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे वारे असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण गाता। अस्तु तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को इक बार ते है, ताकि काल निकट नह है, रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरयो, ताकि ताप तन कमाए हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, कल फांसती ताही ओबरा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद्र दुष्ट

0: ओवारी अरे ठोर मोहो सहाय दुष्ट रोखते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सर ठोर मोहो सहाय दुष्ट रोखते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते कोहूं आंख तरह नहीं आने हो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मन्यो सिमृत शास्त्र वेद सहाय बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तो ही बखन्यो दोहरा सगल द्वार को छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार को छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मनवजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा घरता तेरा सब किछे है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मानव सावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है बसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एहे बड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होआ तितिकार अन्न हद बाजे आनंद सुनो वड्डे भागी हो सकल मनोरथ पूरे पार बरम प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गोरते जानी सोनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पारे भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अन्न हद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पारे भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे मुंदामणी महला पंजवा थल विच तिन वस्तु पईओ सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पंचाय तिसका होए उदारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसरो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलेया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलेया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब

दोहरां आज्ञा पैया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे, खुआर हुए सब मिलेंगे। बोले सोनेहा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

यन आपे बख्श करे सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे नानक नाम त्यायन तिन निज कर वास है, जुग जुग शोभा होए पौड़ी तू करन कारण समरथ है करते, मैं तुझ बिन अवर ना कोई तुद आपे शिष्ट सिरजिया आपे हुन गोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड्याई गुरमुख दे प्रभु हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब अखो

जुगुहु जुग अटल दीन अर दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझ रहबर गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर रात्रि वेले दे दीवाना अंदर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले सतगुरु जी ने बड़ा तरस कीता है अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वालियो जिथे गुरु के कीर्तनियां पासों सतगुरु जी की पावन बाणी कीर्तन रूप विच सरवण करदियां बाणी दा रस बाणी दा आनंद मान रहे सां। जो लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो ओ चल रहीआं लड़ीवार गुर इतिहास दियां विचारां दे नाल सांझ पाईए। कल दे दीवाना अंदर आप संगत ने इत्थों तक इतिहास सतगुरु जी का सरवण कीता सी। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी वालों सिखां दे पुछे हुए सवाल का जवाब बड़े ढुकवें जे दृष्टांत दे नाल सतगुरु जी ने जवाब दिता। फिर मालक पातशाह जी ने गुरबाणी नूं पढ़न विचारण का जिक्र करदिआं गुरबाणी दे अनुसारी जीवन बसर करदे हां जीवन विच आउण वाले बदलाव और सुखां दा जिक्र कीता और नाल सतगुरु जी फिर उस निर्गुण स्वरूप दे नाल सांझ बन जाण दा जिक्र भी करदे ने। इस तरह मालक पातशाह उथे सिखां नूं उपदेश बख्श रहे ने होर केड़ियां केड़ियां सिख्यावां ने जड़ियां तन गुरु कलगीधर साहब सिखां नूं बख्शदे ने और केड़े पूरने ने जिहड़े तन गुरु कलगीधर साहब पाउंदे ने आओ आपां इतिहास दे अगलेरे पन्नियां नूं विचारन दा यतन करिए। विचारन दी आरंभता तो पहलां सतगुरु तन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण सतगुरु आप रसना नूं बल बख्शण। रसना उत्ते वरत के गुरु साहिब जी अपने इतिहास दियां विचारां साहिब आप करवा लैण और आप सरबत संगत बख्शो असीस। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: भी रण जंग का मैदान भी करना है, जंग के मैदान जूझना भी है, जंग के मैदान जूझोंगे तो सुख पावोंगे। हुण इनू इदां कह लो सतगुरु उपदेश दोवां रूपां च ही, अध्यात्म ते भी ते संसारक भी। संसारक तौर ते सुखी तां होवांगे जे कोई चढ़ के आया ते उहदे नाल ही जंग करन दी समर्था रखदे आं, उहनूं रोकण दी ताकत रखदे आं, तां ही सुखी होवांगे। ते अध्यात्म तौर ते भी खालसे दी ते रोज जंग ही है ना, कदे काम नाल, कदे क्रोध नाल, कदे लोभ नाल, मोह नाल, हंकार नाल, इन्हां नाल रोज ही जंग है। तो जे इन्हां नाल जंग करन दी समर्था होवे तां सुखी रहिंदा है बंदा। हुण अज दे समय विच आपां कह सकदे आं भी बाहरी तौर उत्ते ते जंग जिहड़ी उह बड़ी दूर दी गल है, हुण ते अपनी अंदरली जंग ही रोज चलदी है, ते उसे जंग दे कोलों बंदा हरी तुरिया जांदा। उस जंग चों जितना सी, जे असी इन्हां नाल चल रही जंग जित जांगे ते जीवन सुखाला हो जाएगा, सौखा हो जाएगा, आनंदमई हो जाएगा। पर जे इन्हां तों जंग हार गए ते फिर चेता रखो, फिर जीवन गर्क हो जाणा। जे हुण जंग विच हारिया बंदा उहदी की पाया रह जांदी, जिहड़ा जंग विच हार जांदा उह ते मारिया जांदा, उह ते मर जांदा। ते जे आपां काम हुण दे वस, क्रोध दे वस, हंकार लोभ मोह दे वस हार गए असीं उहनां दे सामणे, ते फिर साडे कोल अध्यात्म मौत ते ही आप सहेड़ ली ना, मर गए ही ते अध्यात्मक तौर ते। इस लई आपां जिवें एक बचन पढ़े, खालसा सो जो करै नित जंग। हुण नेता प्रति दी जंग केड़ी आ, उह इही है भी मैं इन्हां तों कदे हारना नहीं। जिवें एक बचन बाणी दा होर पढ़ लो, नेह ते पंज जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जियो, इन्हां पंजां नूं मैं हरा लिया, इन्हां पंजां नूं मैं अपने काबू च कर लिया, क्योंकि गुरु ने मेरी पिठ ते थापड़ा दिता, ते गुरु दे दिते थापड़े नाल मैनूं इन्ना क बल मिलिया भी इन्हां पंजां कोलों भी मैं जित गया। मैं वह जंग हारिया नहीं, वह जंग भी मैं जित ली। पर जिहड़ा ये जंग नूं जित लैंदा है वह अध्यात्मिक तौर पर सुखी हो जाता है। तो बाहरी तौर उत्ते जे कोई वैरी चढ़ाई करके आ जाए, जे आपां उहदे नाल जंग करके उहनूं सोधा ना लाइए फिर दुखी होवांगे, तो जे उहनूं सोध लईए फिर अहीं सुखी हाँ, फिर आनंद विच हाँ। इस तरह सतगुरु दसदे कहिंदे भाई, वहर कर्म रण करन महाने, करो हो सदा सब विद सुख ठाने। एदां फिर सारियां विधियां नाल सुख मिलेगा।
1: करे शुद्ध मन की तज मैल, गमने संत भगत जिस गैल।
0: अपने मन नूं शुद्ध कर लेना, मन दी मैल नूं छड्ड देना, उस मार्ग ते चलना जिस मार्ग दे उत्ते रब्बी प्यारे तुरे जांदे, उहनां दे साथी बन के तुरना, उहनां दे साथी बन के तुरना। इत्थे शब्द की वरते, गमने संत भगत जिस गैल। जेडे संत भगत, गमने मतलब गमन करना, चलना, गैल हुंदा नाल, उन्हां दे नाल तुरना, उस राह ते तुरना जेडे राह उते संत भगत चल रहे हन।
1: सकल खालसे को गुर दयो, जिनके भाग बड़े थिन लहयो।
0: इस तरह मालक जी ने सबना नू ए चंगे सुभा, चंगे गुण सतगुरु ने दिते, ते जेड़े चंगे कर्मां दे मालक सी उन्हां ने गुरु दे दिते उस उपदेश नूं अपने जीवन विच तारिया है।
1: जो पई इस प्रकार दशमे पातशाहू, रचियो पंथ के रण उत्साहू।
0: इस तरह धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने, दसवे मालक गुरु साहब जी ने पंथ दी रचना कीती, जिथे पंथ दी रचना कीती उथे पंथ दे अंदर रण दे उत्साह दी भी रचना गुरु साहिब करदे।

अखिल सगल जगत चंगे या बुरे या वाचे धर्म तू करमी अपो अपनी के ने रह क्या तू जिन नाम ते आया गई मुशक्कत का।

पद जय कर कीर्त आखिए करते का हो विचारो तित कर गावो सुहेला सुप्रिय सुजनहारो तुम गावो मेरे निरपौ का सुहेला हूँ वारी यित सुहेले सदा सुख होय रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देव नहार तेरे दान कीमत न पवै सिदाते कवन सुमार संबत साह लिखेया मिन कर पावो तेल देहु सजन शीशड़िया जो होवे सब सुमेल कर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हार सिमरिय नानक से दे अवान राग आसा महला पहला से कर से गुर से उपदेश गुर गुरे को बेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख उड़ाई तोय रहाओ विश्व चशिया कड़ियां पै

मंडल जनक मूर्ति धूप मलवान लो पवन चबरो करे सगल बन राये फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत पेरी रहो सहज तब नैन न नैन है तो एक।

मन हरले मंडल मंडाहे, कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे, कर डंडौत पुन वड्डाहे रहाओ। साकत हर साधन जाने अंतन अंतर हो मैं कंडाहे, ज्यों ज्यों चल है चुभ है दुख पावे, जम काल सह से डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन बन पव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, वसुभ खंड ब्रह्मंडाहे।

सतयुग तै मान्यो चलियो बल भावन पायो त्रेता तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो उग्र सैन को राज अबै भगत जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद।

दास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवै सहज।

गुण गावह नवनाथ, धन गुर सच समायो, मां दाता गुण रवे, जेन चक्र वै कहायो, गुण गावै बलराओ, सपत पाताल बसंतो, परथर गुण उचरै।

सत गुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो ता धरियो मस्तक हाथ सहज अम्यो उठो छज सुर नर गण मुन बोहे अगाज मारियो कंटक काल गरज तावत लियो बरज पंच भूत एक कर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खेल है समत सार रथ उन्मन लिवराख निरंकार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार।

कट कट नानक मांझा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरवरे कायनात रोशनी चिराग बारगाह इनायत, सर्व कला भरपूर हाजरा हजूर, राजान राज पनान पान, देवान देव उपमा महान, ऐसे दीन दयाल ग्रीव निवास सतगुरु, बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, चवर और तख्तां दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीयां दे पावन और पवित्र स्थान, गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीयां दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हां, अमृत वेले दीयां हाजरियां लगवा रहे हां, जो सतगुरां ने सानू पावन हुक्म दी दात बख्शी है। सो पावन हुक्म सो ही राग दे अंदर शहीदां दी सरताज, शांति दे पुंज, प्रेम दी मूरत, धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जीयां दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे अंदर 747 अते 748 अंग दे उपर सवाईमान है। सुपातशाह जी पावन हुक्म दे राही किहड़े नदरे कर्म करना कर रहे ने, आओ प्रेम सत्कार वैराग दे विच भिज के सरवण करना करिए जी। सोही महला पंजवां,

निर्वाण कीर्तन गावहु करते का निमख सिमरत जित सुटे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

विस्मात रंग विस्मान अंगे फिर भेजम विस्मात पौन विस्मात पानी विस्मात अग्नि खेडे विडानी विस्मात धरती विस्मात खानी विस्मात साधु रघे प्राणी विस्मात संजोग विस्मात गुंजोग विस्मात पुख विस्मात भोग विस्मात सुत विस्मात सलाह विस्मात उजड़ विस्मात।